0: पहला पहला जे मुहाका कर मोहे पितरी दे अगे बस जानिए पितरी चोर करे बढ़िया है हाथ दलाल के मुस्पिए करे नान के अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोरू सरना अवड़ी आवे बारो बार जूठे जूठा मुख वसे नितन तो होए खुआ सुचे ए ना आखिए वेंजे पिंडा धोई सुचे सही नानका जिन मन वसया सोई पौड़ी
2: ਸਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडिया साधी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के होना के जले वरते सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया खाए न खाए पाए पौड़ी जित से पाई।

0: गला करे कन्हैया खजम ना पाए साथ आप गवाए आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी होय सो गए मुह का कया वाओ बीजे बेख मंगे अमृत बेख हुए न्याओ महला दूजा हरियाणे दोस्ती कदे ना वे रास जे हा जाने ते होवरती बेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावे दूजी हो वे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें

0: कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, अति DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुन सरवन करदे हां मानस कांता 107वां भाग।

जनकपुर से श्री राम विवाह के समाचार की पत्रिका पाकर अयोध्या के राजमहलों में आनंद की लहर दौड़ गई। राजमहलों में उत्साह और उमंग छलक रहा है। रानियां ब्राह्मणों तथा भिक्षुकों को बुलवाकर दान और निछावरे दे रही हैं। शुभ समाचार पाकर अयोध्या के नागरिक प्रेम मग्न हो रास्ते, भवन और गलियां सजाने लगे हैं। ध्वज पताकाओं, पर्दों और सुंदर चंवरों से बाजार की शोभा अनूठी हो गई है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरों, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से सजाकर लोगों ने अपने अपने भवन मंगलमय बना लिए हैं। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर के चतुरसम से गली चौराहों पर चौक पुराए जा रहे हैं। सुंदर सुहागिने 16 श्रृंगार किए मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। राजा दशरथ के राजमहलों की शोभा का वर्णन शब्दों से परे है। उस स्थान का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री राम ने अवतार लिया है। राजा दशरथ ने कुमार भरत और शत्रुघ्न को बुलवाकर बारात सजाने का आदेश दिया। कुमारों ने साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष को बुलाकर घोड़े हाथी सजाने की आज्ञा दी।

परिचय ते ताओ हुन तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किते जान वाले प्रोग्राम दी। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर, 8:40 ते तुसी पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम सुनोगे महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 ते तुसी केंद्र सरकार दी 12 साल विज्ञान ते तकनीक ते आधारित विशेष प्रोग्राम सुनोगे ते इस नूं पेश करनगे अमनदीप जोशी। उस तों बाद 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। सवेरे 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो, दिले तुसी नंबर डायल करना है 0181-2342-173। 11:05 ते प्रोग्राम पेश किया जाएगा जी धमक जलंधर पेंदी। दोपहर 12:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम वसदे वेड़े। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेरी कलम तो कविता पाठ कवलजीत कौर कवल होरा पासों की दित्ती जानकारी सुनोगे ते सांझ च काम काज थावां ते औरतां दा शोषण विषय ते एडवोकेट हरलीन कौर होरा नाल कीती गलबात तुसी सुनोगे। फौजी वीरां लई प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस च तुसी कलाकार पाल दे गीत सुनोगे। साडी दूजी सभा च तुसी शाम 4:02 ते सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 असी तुहानू लै चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे जी गुरुवाणी विचार।

देहाती प्रोग्राम होवेगा शाम 6:30 बजे। इस अज तुसी जीवन च योग विषय दे जानकारी सुनोगे ते जानकारी देंगे आचार्य रघुनाथ। शाम 7:10 ते तुसी NDA सरकार दे 12 साल पूरे होने ते नक्सलवाद ते एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो तुसी सुनोगे। उस तो बाद शाम 7:50 ते तुसी सुनोगे जी पंजाबी वार्ता। इस आज तुसी भगत कबीर जी का जीवन अते सिख्यावां ते चरणजीत सिंह चीमा होरा पासो दित्ती जानकारी सुनोगे।

कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो तुसी सुनोगे। उस तो बाद शाम 7:50 ते तुसी सुनोगे जी पंजाबी वार्ता। इस आज तुसी भगत कबीर जी का जीवन अते सिख्यावां ते चरणजीत सिंह जी माहौरा पासो दित्ती जानकारी सुनोगे। रात 8:10 ते तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9 तुसी सुनोगे न्यूज़ 8:09। रात 9:15 ते तुसी सुनोगे जी स्पॉटलाइट ते 9:30 पेश किया जाएगा चर्चा का विषय। तीनों प्रोग्राम साड़ी दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। रात 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश। ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा का वेरवा। हुण तो बस कुछ ही पलां च तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत च समाचार।

0: सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसंबोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्त्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीतदर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्ति इति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडाङ्गणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिकक्रीडायां फ्रांसदेशेन सेनेगलदेशं 3-1 इति अङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर दे 7 बज रहे ने ते हुन पेश ने अज दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन विच आयोजित G7 शिखर सम्मेलन विच नवियां साझेदारियां बनाउण अते अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दा पुनर्निर्माण विषय ते एक उच्च पदरी कारज सेशन विच हिस्सा लिया। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च एक उच्च पदरी मीटिंग दौरान सौनी रुत 2026 लई देश भर विच कीतियां गईयां तैयारियां दी वेरवे सहित समीक्षा की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि वख-वख सभ्याचारां ते भूगोलिक स्थितियां दे बावजूद भारत दुनिया दे सब तो वड्डे लोकतंत्र वजो उभरिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ के हुण तक कई राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां विच 2027 दी मर्दमशुमारी दा पहला पड़ा पूरा हो गया है। सामाजिक न्याय अते शक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत हफ्ते दा वर्चुअल उद्घाटन करनगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अमृतसर च लश्करे तौयबा दे एक कारकून नाल संबंधित एक कार नू जब्त कीता। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वल्लों अमृतसर रेलवे स्टेशन तो अमृतसर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी नू हरी झंडी दिखा के रवाना कीता गया। यह रेलगड्डी अमृतसर बटाला गुरदासपुर पठानकोट अते जम्मू तवी राही कटरा तक मुसाफरां नू आधुनिक अते तेज रेल सेवा मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों पंजाब भर दियां औरत सरकारी मुलाजमां लई वड्डी राहत दा ऐलान। ग्रुप सी अते डी श्रेणियां दियां औरतां मुलाजमां नू घरां तों वध तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात कीता जावेगा। अते अमृतसर दी ड्रीम सिटी कलोनी विच जम्मू पुलिस अते अमृतसर देहाती पुलिस वालों सांझे ऑपरेशन दौरान एक फ्लैट तों एक AK-47 हथियार अते ड्रग बरामद होने दी खबर है। ऐ सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर नू थोड़ा जा इंतजार होर।

वाह जी वाह, मुकेश ते साथियां दी आवाज़ बहुत सोहणा जिहा गीत इंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम सोहणी सवेर च। ते दोस्तों मौसम बारे भी गल कर रही करिए, ते मौसम विभाग वालों यानी कि IMD वालों जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है जी, कहा जा रहा है कि पंजाब ते चंडीगढ़ च अज मौसम दा जिहड़ा मिजाज है वह बदल सकता है। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे कई जिलों च गरज चमक दे नाल बारिश दी जिहड़ी संभावना है वह जताई गई है। यह भी कहा गया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां चलन की जिहड़ी पेशनगोई है वह भी की गई है। तो कहा जा रहा है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिलका कुछ इलाके ने जिथे बारिश नाल तेज़ हवावां चल सकती ने। मौसम विभाग वालों कितने ना कि जानकारी जिहड़ी दित्ती गई सी दोस्तों वह है कहा गया कि 19 जून तक पंजाब च जिहड़ा मौसम है उहदे च तापमान च जिहड़ी है वह हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। बारिश जिहड़ी है उहदे करके मौसम का जिहड़ा मिजाज है वह बदल सकता है। हल्की बारिश किते किते जिहड़ी है वह मौसम विभाग वालों संभावना जताई गई है कि पै सकती है। तो सीधे तौर पर जेकर दोस्तों असी गल करिए तो टैंपरेचर च डाउनफॉल होएगा, जिहड़ा तापमान है जेकर उस च गिरावट दर्ज होंदी है तो लोगों नूं उहदे नाल राहत ही मिलेगी क्योंकि हाले मानसून नहीं मानसून ने नहीं दस्तक दी है पंजाब च, पर प्री मानसून मनिया जा रहा सी कि 11-12 जून तो ही उन्हों ही कंसीडर किया जा रहा सी। जेकर अगे आप आने वाले दिनों की गल करिए जे बारिश नहीं पैंदी है तो उमस भरी जिहड़ी गर्मी है वह लोगों नूं तंग करेगी। पर असी यही कहने कि जिहड़ी है IMD वालों अज क्या गया है कि पंजाब के कई इलाकों च बारिश हो सकती है। तो असी भी चाहते हैं कि बारिश होवे तो जिहड़े लोग गर्मी नाल हाल बेहाल हो रखे लोगों का उस तो कितने ना कि राहत जिहड़ी लोगों नूं जरूर मिले। तो जेकर मौसम सोहना होएगा तो फिर मन भी खुश होएगा। तो मन नूं खुश रखन लई गीत संगीत तो बहुत जरूरी ने। तो प्रोग्राम सोहनी सवेर च अगला गीत भी तुहाडे दिल नूं होर खुश कर देगा, तुहाडी सवेर नूं होर सोहना बनाएगा। लो जी इंजॉय करो मोहित चौहान की आवाज़ च यह सोहना जिहा गीत।

मोहित चौहान दी आवाज़ च बहुत सोहना जिहा गीत फिल्म जब वी मीट तो असीं सुन रहे सी ते प्रोग्राम सोहनी सवेर च। दोस्तों हुण गल करदे आ कि गर्मियां ने, हुण गर्मियां दी छुट्टियां चल रहियां ने, कई लोग अपने परिवारां दे नाल पहाड़ां, समुद्रां या फिर होर सोहणियां सोहणियां जिहड़ियां थावां ने ना उत्थे घूमन जा रहे होणगे। पर एक चंगे सैलानी दी जिहड़ी पहचान है ओह सिर्फ घूमन नाल नहीं हुंदी दोस्तों, सगों अपनी जिम्मेवारी निभाण नाल हुंदी है। असीं अक्सर वेखदे आ कि कुछ लोग घूमन तां जांदे ने पर अपने पिछे प्लास्टिक दियां बोतलां, चिप्स दे पैकेट या फिर होर जिहड़ा कूड़ा है ना दोस्तों उत्थे छड्ड आंदे ने। सोचो जे हर आउण वाला जिहड़ा सैलानी है वह यही कुछ करे तां फिर वह जगह जिथे असीं जा रहे हां वह सोहणी किवें होवे। दोस्तों कुदरत सानू बहुत कुछ दिंदी है।

वाह जी वाह, सतिंदर सरताज दी आवाज़ च इस गीत ने सानू सवेरे सवेरे ही बहुत सारियां थावां ते घुमा दिता। तो दोस्तों, घड़ी दी जिहड़ियां सुइयां ने ना, वो इशारा कर रही ने इस प्रोग्राम नू इत्थे ही समेटन दा, इत्थे खत्म करन दा। सवेर दियां गल्लां हुण इत्थे ही समेट दे। उम्मीद है जी अज दा सफर तुहानू प्रोग्राम सोहणी सवेर च जो असी गल्लां कीतियां, जो जानकारियां सांझियां कीतियां, वो तुहानू सोहणियां लगियां होणगियां। जे अज किसी गल ने तुहानू एक पल लई वी सोचण ते मजबूर कीता ना दोस्तों, या फिर किसी गीत ने तुहाडे चेहरे ते मुस्कान जिहड़ी लियांदी है, तां फिर साडी कोशिश जिहड़ी है ना प्रोग्राम सोहणी सवेरा ही वह कामयाब रही है। मतलब हुण मैनू अपनी दोस्त शुभता नू इजाजत दो जी, ते असी यही अरदास करदे हां कि तुहाडा जिहड़ा दिन है वह सोहणा बीते, चढ़दी कला च बीते। कहिंदे ने कि खुशियां बीज सजना हासे उगणगे, ते प्रोग्राम सोहणी सवेर च बस यही संदेश है जी जांदे जांदे, कि कोशिश करो आप भी खुश रहो, अपने आस पास भी खुशियां वंडदे रहो ते तंदुरुस्त रहो। प्रोग्राम सोहणी सवेर च हुण मैनू अपनी दोस्त शुभता नू इस आखिरी गीत दे नाल इजाजत दो, उदित सुनिधि नेहरा जोशी की आवाज़ च। जाते जाते इंजॉय करते जाओ ये गीत।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव

0: और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती हैं। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं पंजाबी फिल्म म्यूजिक दा प्रोग्राम महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म बुर्रा चो मास्टर सलीम, पप्पी गिल, लैम्बर ते युवराज हंस दा गाया गीत। लो जी, तुसी भी इंजॉय करो।

0: कार तो काम करो, वादू तनखा बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
1: फसी।
2: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है,
1: जानकार बनो, सुचेत रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब ते। तो इस प्रोग्राम च अगला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म चोरनी चू हंसराज हंस दी आवाज़ च। गीत लो जी करो एंजॉय।

प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दे। इस प्रोग्राम च अगला गीत असीं तुहानू सुनान जा रहे हैं अमरिंदर गिल दी आवाज़ च, फिल्म गोरियां नू दफा करो। लो जी करो एंजॉय ये गीत।

अमरिंदर गिल दी आवाज़ से तुसी सुन रहे सी गीत प्रोग्राम महक पंजाबी चल रहे। तो इस प्रोग्राम च आखिरी गीत असी तुहानू सुना जा रहे फिल्म असानू मान वतना दा। इस फिल्म दा गीत जिसनू गाया हरभजन मान ते सुनिधि चौहान ने। लो जी जाते जाते इस प्रोग्राम च करो इंजॉय गीत।

0: भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: साल 2024-25 विच रिकॉर्ड 7.49 लाख तो वध IPR अर्जियां दर्ज कीतियां गईयां ने। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने साल 2014 तो 2026 दे विचकार अजिहे कारनामे कीते ने जिन्हां ने विश्व पद्धर ते भारत दा सिर मान नाल उच्चा कीता।
2: पुलाड़ विज्ञान दी गल करिए तां वख-वख देशां ने अपने नवे उपग्रह लॉन्च किए हैं और चंद्रमा ते मंगल ग्रह बारे नवीं खोजां कीतियां हैं। भारत की पुलाड एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई सफल मिशनां राहीं दुनिया विच अपनी वक्री पहचान बनाई है। वातावरण संभाल के खेत्र विच सूरजी ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलैक्ट्रिक वाहनों की वरतों वधी है, जिस नाल प्रदूषण नूं घटाउण विच मदद मिल रही है। इस समय विज्ञानी जलवायु परिवर्तन दी बहुत चुनौतियां नाल निजिठण लई नवे हल लभ रहे हन। असी कह सकते हां विज्ञान ने मनुखी जीवन नूं होर सुखाला, सुरक्षित अते उन्नत बनाया है।
1: ते अगे गल करदे हां मंगलयान दी। नवंबर 2013 विच छड्डे गया इह मिशन सितंबर 2014 विच सफलतापूर्वक मंगल ग्रह दी जमात विच दाखल होया ते भारत दुनिया दा पहला अजिहा देश बनिया जिसने अपने पहले ही यतन विच मंगल ग्रह ते पहुंचन विच सफलता हासिल कीती ते ओ भी हॉलीवुड फिल्मां दे बजट नालों भी घट खर्चे विच।
0: स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: साल 2019 विच चंद्रयान 2 दी अंशक सफलता तो सबक लेंदे हुए विज्ञानियों ने 23 अगस्त 2023 नूं इतिहास रच दिता। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा दी दक्षिणी ध्रुव ते सफल सॉफ्ट लैंडिंग कीती ते भारत चंद्रमा दे इस अणगोले हिस्से ते पहुंचण वाला दुनिया दा पहला देश बनिया। चंद्रयान 3 मिशन दी कामयाबी ते विज्ञान ते तकनीक ते केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विचार इस तरह प्रगटाए सन।
3: It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond.
1: सितंबर 2023 विच भारत ने सूरज अध्ययन करने लई अपना पहला पुलाड़ मिशन आदित्य

0: हुने तुसी केंद्र सरकार दे 12 साल विज्ञान ते तकनीक ते आधारित विशेष प्रोग्राम सुनिया। इस नू पेश कीता अमनदीप जोशी ने ते ए प्रोग्राम साडे बठिंडा ते पटियाला स्टेशन ते वी नाल दे नाल प्रसारित कीता गया। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं गजलां।

जाफरा नु आधुनिक अति तेज रेल सेवा मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों पंजाब भर दियां औरत सरकारी मुलाजमां लई वड्डी राहत दा ऐलान। ग्रुप सी अते डी श्रेणिया दियां औरत मुलाजमां नू घरां तों वध तों वध 40 किलोमीटर दे दायरे अंदर ही तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 523 होर नौजवानों नू नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब सरकार वल्लों खेडां अते बूट निर्माण खेतर नू हुलारा देन लई फुटवेयर डिवीजन एंड डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि इफ DDI नाल समझौता अते मर्दां दे क्रिकेट विच अज लखनऊ विखे 3 मैच दी लड़ी दे दूजे एक रोजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत दा मुकाबला अफगानिस्तान नाल होवेगा। ए सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो की कड़ी मुताबिक इस वेले सवेर के 10:03 हो रहे हैं ते हुन वेला हो चुके है जी तुहाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम हलो फरमाइश दा। फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो ते अपने फरमाइश दे गीत सुन सकते हो। उदे तुसी नंबर डायल करना है 0181-3342-173। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च शिरकत करो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुनो। फिलहाल सब तो पहला गीत इस प्रोग्राम च सुनान जा रहा है तुहानू अल्तमश फरीदी, पलक मुचल ते मीट क्रॉस दा गाया। ए फिल्म ड्रीम गर्ल दा गीत। लो जी, करो इंजॉय।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।

बहुत सुना गीत तुसी एंजॉय कर रहे सी फिल्म पति पत्नी और वो जो महेंद्र कपूर तक आया। हुन अगला गीत जड़ा है असी तुहानू सुनान जा रहे हैं उसकी फरमाइश सानू भेजी है जी फाजिलका तो कृष्ण सिंह जी ने फाजिलका तो। ते इन्हां दी फरमाइश है जी शोले फिल्म चों किशोर कुमार दा गाया गीत सुनना चाहते ने। लो जी तुसे भी करो एंजॉय ए गीत।

किशोर कुमार दी आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे सी बहुत सोहना जिहा गीत फिल्म शोले चो। ते प्रोग्राम च अगला गीत हुण असीं तुहानू सुनाउण जा रहे हां फिल्म कल हूं ना हूं चो शंकर महादेवन ते साथियां दी आवाज़। चलो जी करो इंजॉय, बहुत सोहना गीत है फिल्म कल हूं ना हूं दा गीत।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म चो आशा भोसले ते अभिजीत दी आवाज़ च तुसी सुन रहे सी जी। बहुत सोहना जिहा गीत ते हुण जिहड़ी कड़ी दी सुइयां ने ना इशारा कर रही ने इस प्रोग्राम नू खत्म करन दा। ते कॉल्स जिहड़ियां ने ओह बेशक अज कनैक्ट नहीं हो पाईआं, असीं लिसनर्स नाल लाइव गलबात नहीं कर पाए, लेकिन तुहाडीआं फरमाइशां साडे तक पहुँचियां, असीं ओह फरमाइशां जिहड़ियां ने ओह प्ले कीतियां तुहाडे लई, जिहड़े तुहाडे गीत मन पसंदीदा ने वो तुहानू सुनाए। तो जिहड़ी असुविधा हुई है उहदे लई असीं माफ़ी चाहते हाँ, लेकिन जल्द तो जल्द यह जिहड़ी टैक्नीकल एरर है नू खत्म करदे होइआं तुहाडे नाल असीं फिर तो एक बार आकाशवाणी रेडियो के जरिए जिहड़ा हैलो फरमाइश प्रोग्राम है उस तुहाडे कॉल जरूर अटेंड होणगीआं। तो हुण जाते जाते इस प्रोग्राम च गीत तुहानू सुनाण जा रहे हैं अज प्रेम की गजब कहानी फिल्म चो, नीरज श्रीधर ते सुजैन डी मेलो दी आवाज़ च बहुत सोहना जिहा गीत है। प्रोग्राम च जाते जाते गीत तुसी इंजॉय करो, तो उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन बहुत सोहना बीते, चढ़दी कला च रहो सारे तुसी। ते इसी दुआ दे नाल हुण इस प्रोग्राम च ये आखिरी गीत लो जी इंजॉय करो।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय

0: को दर्शाती हैं। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन्डर लाइन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इसमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने, समा हो रहा आओ सुनते हैं प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम विच जिसका नाम है तमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम विच तुसी सुनते हो अपने मनपसंद गीत फरमाइशा करके सानू व्हाट्सएप के जरिए। जी दोस्तों, अपने मैसेज सानू भेजो व्हाट्सएप के जरिए, अपनी फरमाइशा सानू भेजो इस नंबर ते 9465536077 यानी कि 9465536077। करना की है इस नंबर ते जाके, व्हाट्सएप ते जाके तुसी अपना नाम टाइप करना, अपने शहर का नाम टाइप करना, तो उस गीत दे बोल टाइप करने ने जिस गीत नू तुसी साडे कोल फरमाइश करके सुनना चाहुंदे हो। सो सिंपल। सो दोस्तों, जद तक तुहाडीआं फरमाइशां साडे कोल पहुँचदियां ने तद तक असी सुनदे हां प्रोग्राम दा शुरुआती गीत। तो मेरे नाल जुड़े रहो इस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम है जी तमक जलंधर पैंदी। फरमाइशां पूरियां करन वास्ते मैं तुहाडी दोस्त वीनस अज तुहाडे नाल रवांगी। सो आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा पहला शुरुआती गीत।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभिषेक जैन, आशीष खुराना, अर्श धीर, जमनप्रीत संधू ते बहुत सारे इन्हां दे साथी भी फरमाइश कर रहे ने। ते अगली जिहड़ी फरमाइश सानू आई है जी, सेम ही फरमाइश है जी। एक छोटी जी रिक्वेस्ट है कि एक प्रोग्राम से सिर्फ एको ही फरमाइश भेजा करो, क्योंकि गीत तुहाडे पसंद दे जे सुनाते ते फिर दूसरे नूं भी बराबर मौका देना चाहिए ना कि वह भी अपनी पसंद के गीत सुनन। सो इन्हां सारे की फरमाइश ते बब्बू मां दी आवाज़ विच आओ सुनते हैं ये गीत।

ये जो भी बैठे ने सीधी गोदे अंदर अपनी ममता दा नूर बरसा रही है। आओ असी वी एस नू प्यार करिए जिन्ने प्यार नाले आप निभा रही।

मेरी तीसरी कविता जिंदगी। नवे नवे रंग नित दिते जिंदगी ने, असी खुशी खुशी।

हस हस सोहणिया बिताई जा, जिन्ने साथ दित्ते तेनू रब ने, हस हस सोहणिया बिताई जा। राजे रणजीत जही चाल सदा चलनी, भावें किन्नी वी ओ गुड्डी तेरी चाड़ दे। उसे डाढ़े हाथ कमल सब दियां डोरा, भावें डोब दे ते भावें ओ तार दे। जिस बेड़ी दा भी रखे है मला तैनू, मार मार चप्पू तू चलाई जा। जिन्ने सा दित्ते तेनू रब ने, हस हस सोहणिया बिताई जा। जिन्ने सा दित्ते तेनू रब ने, हस हस।

0: जी, ऐसी कविता पाठ कवलजीत कौर कमलोनाथ वल्लों। ते कविता पाठ ना जिवें कोई भी कविता होए वो जिहड़ी जिंदगी नाल बहुत जुड़ी हुई होंदी है।
1: बिल्कुल
0: साडी सोच, साडी इमोशन, साडे ख्यालात किस तरह पेपर ते उतार के उकेर के फिर उन्हां नूं जिहड़े दूसरियां तक पहुँचाना एक खास एक तरीका हुंदा, एक जज्बा हुंदा है जिहड़ा बहुत ही अच्छा लगदा है। ते ये ऐसा नहीं है कि आपां ये सोचते हैं भी शायद असी लिख नहीं सकते या सानू लिखना आंदा नहीं, बट एक सोच होए, एक जज्बा होए, एक शौक होए ते कोई भी जिहड़ा है इत्थे तक पहुँच सकदा है।
1: और जदों पहुंच के उस तो बाद जिहड़े लिरिक्स ने, वो जिहड़े शब्द ने, कई दिलों नूं छू जांदे ने। और
0: बिल्कुल
1: कईयां नूं ऐ भी लगदा है कि सच्ची साडी जिंदगी दे नाल भी जुड़े हुए हुंदे ने,
0: बिल्कुल
1: और असीं अपनियां जिंदगियां नूं बदल सकदे हाँ। जदों असीं बहुत ज़्यादा परेशान हुंदे हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलां दे विच हुंदे हाँ, तां कहिंदे ने कि जे साडे

0: आसपास कोई दोस्त कोई संगी साथी सानू नहीं मिलदा ते असी अपने शब्दों नू कागज़ दे उपर डायरी दे उपर अपना दोस्त मान के अगर लिख
1: बिल्कुल
0: दईए ते मन दा बहुत ज़्यादा भार जिहड़ा साडा ओह जरूर ते जरूर हल्का हो सकदा है। सो इस टिप दे नाल असी जिहड़ा है इस कविता पाठ खास करके ये हुण इत्थे विराम लगदा है ते अगला सिलसिला जिहड़ा है ओह शुरू हुंदा है। और सिलसिला किहड़ा है कोमल जी दस्सणगे?
1: सिलसिला तो पहले गीत ना सुन लिया जाए
0: हाँ जी उही सिलसिला जी म्यूजिक वे के सिलसिला है। तुसीं इशारा समझ गए हो भंगड़े वाला
1: जी
0: जरूर ते जरूर क्योंकि जदों असीं गल करते हाँ इन्हां सिलसिलियां दी ते इन्हां दे नाल ही जिहड़ा है प्रोग्राम वसते वेड़े चलदा रहिंदा है। और हुण असीं रुख करदे हाँ जी म्यूजिकल वर्ड दे वल ते सारयां नूं सुणाउंदे हां खूबसूरत जिहा गीत।

0: हेलो
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21 22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
4: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
3: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
4: अप्लाई किवें करिए?
3: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लिए 011-2311-2428 से संपर्क करो।
4: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
5: जी, ते जिवें आपां गीत सुनिया, उस तो बाद ब्रेक भी लई, ते नाल नाल जिहड़ियां गल्लां बातें दा सिलसिला चल रहा, ये प्रोग्राम चल रहा वसदे वेले, ते इहदे विच एक खास गल जिहड़ी असीं अपनी भैणां नाल श्रोतियां नाल बार बार सांझी करदे रहिंदे आ कि सानू अपने परिवार विच किन्नी चिंता होंदी है। कोई बाहर गया है, खासकर कोई बेटी बाहर गई है, तो थोड़ा जा लेट हो जाए माँ प्यो ने चिंता हो जाती है।
6: बिल्कुल,
5: भी पता नहीं क्यों इन्नी देर हो गई, आज स्कूलों इन्नी देर तो नहीं आई, तो ये चिंता क्यों होंगी? क्योंकि समा एवें चल रहा है।
6: बिल्कुल,
5: तो एवें दे समय दे विच अपने आप नू समय दे हिसाब नाल ढालना पैंदा है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उहदा सब तो वड्डा तरीका है वे कि जिवें दा भी आपां जिथे भी आना जाना है, चाहे लड़का होए लड़की होए, कोई भी छोटा होए वड्डा होए, अजकल कोई फर्क नहीं है, तो बस ये कि अपना ध्यान रखना आना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी करनी आनी चाहिए है कि कभी भी कोई समस्या च बंदा फेस करन नू सामने आई जाए तो घबराई दा नहीं हैगा, किस तरह उसनू नछिटना है। तो पब्लिक प्लेस तो होके जाना चाहिए। मैं बार बार अपने स्रोतियां नू कहंदी रहनी हां कि अजकल जिवें धुप है, दोपहर होंदी है, दोपहर सारे अपने अपने अंदर होंदे ने, जे तुसी किते आना जाना है तो ऐसी जगह तो जाओ जिथे थोड़ी आवाजाई होवे, जिथे बिल्कुल सुनसान इलाका है, शॉर्टकट पावे होवे, पापा लंबे रस्ते तो चले जाइए, बट अपनी सिक्योरिटी नू ताकते ना रखिए।
6: बिल्कुल, और जदों असी खास करके गल करदे आं, असी अपने शौक पूरे करदे आं, असी हर वो खुशी जिहड़ी है अपनी अपने परिवार की पूरी करदे आं जिहड़ी उन्हां नू चाहीदी हुंदी है। सो किते ना किते ये चीज़ां, ये गल्लां बातां भी परिवारां च बैठ के होनियां चाहीदियां ने, करनियां चाहीदियां ने, इस तो पहलां कि कोई अनहोनी घटना बाहर वापर जाए। बच्चों नू, बजुर्गों नू, सब नू ये चीज़ समझनी चाहीदी है कि जेकर बजुर्गों नू भी खास करके परिवारां दे विच रोकिया जांदा कि नहीं तुसी कल्ले हो या तुसी घर दे बाहर जाने हो तो अपने कोल सोटी या कोई चीज़ रखो, तो वह कह देंगे नहीं कुछ नहीं हुंदा, मैनू कुछ नहीं होन लगा, तो वो जिहड़ी चीज़ है ना वह बाद विच फिर असी उन्हां नू कहने कि देखिया तुहानू कहा सी ना भी तुसी इदां ना करो, इधर दी ना जाओ। तो बच्चों लिए भी ये चीज़ बनती है और वड्डियां लिए तो बनती ही है, क्योंकि वह हमेशा तो हमेशा ज़्यादा समा उन्हां नू बाहर विचरना पैंदा, चाहे सुहाणियां ने वह घर तो बाहर जांदियां ने, कामकाजी औरतां ने, या फिर जदों असी गल करदे हां मर्दां दी, हर किसी नू जिहड़ा है वह किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करना पै सकता है। सो इसलिए हमेशा तो हमेशा तैयार बर तैयार पोजिशन होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी मुश्किल जी है साढ़े को सामने ना आए। सो जो असी प्रोग्राम वस्ते वेड़े की गल करते हैं तो इस असं आस उम्मीद करते हैं हमेशा कि जड़िया गलों बातें थोड़े न करते हैं वो तुम जरूर अपने दिमाग च बिठाते हो, दूसरे नाल सांझ भी पाते हो। और लेकिन जदों असी इस खास सांझ की गल करते हैं तो एक योजी सांझ बहुत ही प्यारे तो वधिया तरीके सारे भी पवाई जाती है, जिस दे विच के तुहानू सतर्क किया जाता है, जिस दे विच के तुहाडे नाल इहो जिहियां गल्लां बातां पुजदा कीतियां जांदियां ने, खास करके जिहड़ियां तुहाडियां जिंदगी नू बदल सकदियां ने।
5: बिल्कुल, ते सांझ दे तहत जिहड़ा अज दा आपां विशा लै के आए हां उह है कामकाजी थावां ते औरतां दा शोषण।
6: जी,
5: ते इह कई जगह ते हुंदा है, ते इह अगर किसी नाल हो रिहा है ते चुप नहीं रहना चाहीदा, आवाज़ उठानी चाहीदी है। ते आवाज़ उठानी है ते किवें उठानी है? अगर असीं कहीए ते किन्नू कहीए, शिकायत कित्थे करिए? अगर असीं शिकायत करांगे उहदे नाल साडे ते की असर आएगा, साडे परिवार ते की असर आएगा? इह सारी जानकारी सानू दे रहे ने एडवोकेट हरलीन कौर ते सुनदिया कीती हुई गलबात।
7: कामकाजी थां ते औरतां दा शोषण गल करांगे इस बाबत एडवोकेट हरलीन कौर जी नाल। हरलीन जी, थोड़ा स्वागत करदे हां।
8: बहुत बहुत शुक्रिया मैडम थोड़ा।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेल्लू और वीपी शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दस 1:05 वज रहे ने, समा हो रहा आओ हुण तुहानू साडे दिन विच प्रसारित किए जाने वाले बाकी दे रहिंदे प्रोग्राम्स ते उन्हां दा प्रसारण समा दस दईए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: उदित नारायण ते अलका याग्निक दी आवाज़ां विच तुसी सुन रहे सी फिल्म तेरे नाम चो लिया गया गीत। प्रोग्राम सुन रहे तुसी फौजी वीरां लई, प्रोग्राम हजे जारी है, समा हो रहा हुण तो कुछ ही पलां बाद 1:40 ते तुसी सुनोगे पंजाबी च खबरां, उस तो बाद 1:50 ते तुसी सुनोगे उर्दू च समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमनदेव, पहला चुनावियां खबरां। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थाओं विच महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय साल 2025-26 भारत का सालाना रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर से पहुँच गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में नागरिकों की सुरक्षा से दुश्मन की तबाही लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। ICC महिला 2020 विश्व कप क्रिकेट मैच में आज भारत का नीदरलैंड से मुकाबला होगा। G7 शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करनगे। इस मुलाकात से सब दियां नज़रां ने भारत G7 सम्मेलन विच एक भाईवाल देश है। श्री मोदी ते श्री ट्रंप विचकार आखिरी मुलाकात पिछले साल फरवरी विच अमरीका च होई सी। अज दी मीटिंग विच दोवें धिरां विचकार कई खेतरां विच सहयोग नूं मजबूत करन ते आपसी हित दे खेतरी ते आलमी मुद्दयां ते व्यापक चर्चा होण दी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज एक होर G7 सैशन विच भी हिस्सा लैणगे। इस दा विषय है सारिआं दे लाभ लई संतुलित समावेशी अते निरंतर आर्थिक विकास नूं मुड़ शुरू करना। ओह मुद्रा फंड नूं सुरक्षित, तेज़ अते प्रभावशाली ढंग नाल लागू करन ते एक वर्किंग लंच विच भी शामिल होणगे। कल शिखर सम्मेलन दौरान प्रधानमंत्री ने कैनेडा दे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, बरतानिया दे प्रधानमंत्री कीर स्टामर अते UAE दे राष्ट्रपति शेख मुहम्मद बिन जायद अल नहायन नाल मुलाकात कीती। उन्होंने कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फता अल सीसी, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची और दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग नाल भी मुलाकात की। श्री मोदी अज शामी फ्रांस की राजधानी पैरिस पहुंचणगे। साढ़े पत्रकार ने खबर दी है कि भारतीय भाईचारा प्रधानमंत्री की बेसबरी नाल उड़ीक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दहाके विच भारत दीआं रक्षा समर्थावां विच आत्म निर्भरता ते नवीनता ते तकनोलॉजी ते स्वदेशी निर्माण की सहायता नाल महत्वपूर्ण तब्दीली आई है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मां ते MyGov तों एक पोस्ट सांझी करदिआं प्रधानमंत्री ने इस गल ते चानणा पाया कि किवें भारत ने उन्नत स्वदेशी तकनोलॉजियां की सहायता नाल जमीन, समुंदर ते हवा विच अपनी रक्षा समर्थावां नूं मजबूत कीता है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में भारत के रक्षा खेत्र में हुए बदलाव को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्तीय साल 2025-26 में भारत का सालाना रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ रुपए के सब तो उच्चे पद्धर पर पहुँच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्राप्ति पिछले वित्तीय साल में 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन के मुकाबले 15% के वध प्रभावशाली वाधे को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्तीय साल 2013-14 में 4,746 करोड़ रुपए के मुकाबले 4 गुणा वध गया है। राष्ट्रीय महत्ता की एक प्रमुख संस्था पंजाब

0: प्रार्थना करने की पॉलिसी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी फैसलाकुन कार्रवाइयों तक से भारत ने एक वाज़े पैगाम भेजा है कि उसकी खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में इसकी कौमी सलामती के ताने बाने में एक तारीखी तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी कहा कि दिफा के शोबे में आत्मनिर्भरता के लिए मुल्क के अज़्म से मुल्क की सलाहियतों को इस्तेकाम मिला है। मुज़ल्ला फौजें जदीद बनी हैं और ज़मीन, समंदर, फ़ज़ा, साइबर और खला के शोबों की तैयारियों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ने ख़ास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल के सफ़र से एक मजबूत तर, महफूज तर, खुद कफील और मजीद पुरेतमाद भारत की अक्कासी होती है जो अपने कौमी मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है और एक कायदाना आलमी ताकत के तौर पर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कहा है कि पिछली दहाई के दौरान भारत की दिफाई सलाहियतों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुद किफालत के नज़रिए की रहनुमाई में हुआ है जिसे इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और साजो सामान को मुल्क ही में तैयार किए जाने से तकवीत मिली है। जनाब मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माइक ऑफ के जरिए पैगाम भेजते हुए वजाहत की है कि मुल्क ने किस तरह फ़ज़ा, ज़मीन और समंदर में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है, मुल्क ही में तैयार की गई टेक्नोलॉजीज़ को जदीद तरीन बनाया है और ख़ुद इन्हिसारी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत तर बुनियाद की तामीर की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की तरक्की की एक झलक मिलती है जो उसने पिछले 12 साल में दिफा के शोबे में हासिल की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़राती और डब्बा बंद ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में इजाफे से मुतालिक तंजीम के चेयरपर्सन अभिषेक देव ने बताया कि अमरीका, ब्राज़ील, चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े आलमी बरामदकारों से मुकाबले के बावजूद भारत की ज़रई बरामदात आज 5,000 मसनूआत पर मुश्तमिल हैं जो एक दहाई कबल तकरीबन 280 मसनूआत पर मुश्तमिल थीं। जनाब देव ने बताया कि मुल्क की ज़राती बरामदात गुज़श्ता साल 53 अरब डॉलर तक पहुंच गईं और भारत ज़राती मसनूआत बरामद करने वाले टॉप 10 मुल्कों में शामिल रहा। नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की 8वीं ब्रिक्स मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत वर्चुअल वसीले से मुनक्किद की गई। नशीली अशिया के कंट्रोल के ब्यूरो NCB ने बताया कि भारत, चीन, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के मंदूबीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान मंदूबीन ने नशीली अशिया की कौमी सूरतेहाल से मुतालिक रिपोर्ट्स एक दूसरे के सुपुर्द की और नशीली अशिया से लाहिक खतरात पर बातचीत की। ज़मीन के बंजर होने और खुश्कसाली की रोकथाम का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन ज़मीन के बंजर होने की रोकथाम और खुश्कसाली के असरात से निमटने के लिए बैनुल अक्वामी तआवुन से मुतालिक बेदारी में इजाफे के मकसद से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सरसब्ज जंगलाती ज़मीन, तस्लीम कीजिए, एहतराम कीजिए और बहाली कीजिए। इस मौजू के तहत सरसब्ज जंगलाती ज़मीन की इक्तिसादी, माहौलियाती और सकाफती कदर को और ज़्यादा तस्लीम किए जाने, इसके रिवायती फवायद की बुनियाद पर इसका एहतराम किए जाने और जो ज़मीन बंजर हो गई है उसकी बहाली में काफ़ी ज़्यादा सरमाया लगाए जाने की बात कही गई है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी से ये याद रखने को कहा है कि ज़मीन तमाम तर माहौलियाती निज़ाम की बुनियाद और हमारी ग़िज़ा नीज तवानाई का असल वसीला है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: भारत ने मजीद 5 टन ज़रूरी दवाइयां काबुल को भेजी हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए इंसानी मदद फराहम करने के तई मुल्क के मुस्तकिल अज़्म की दोबारा तस्दीक होती है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मजीद आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। क्रिकेट में लखनऊ में भारत ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा बैनुल अक्वामी

मुकाबले में 6 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल की क्यादत में भारतीय टीम मस्कुरा सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने का इरादा रखती है। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियो में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा

0: एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के शहर एवियों में G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस से अलग अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की खुद मुख्तारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए फैसलाकुन कार्रवाइयों के तौर पर जिक्र किया। भारत के दिफाई साजो सामान की तैयारी में माली साल 2025-26 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो साल 2020-21 से अब तक 110% इजाफा है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 मैचों की सीरीज का दूसरा ODI भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर तो हाजिर हाँ प्रोग्राम लेके फौजी वीरां लई। प्रोग्राम अगे तोरदे हां ते आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2:15 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
2: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलू

0: ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़ से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओज के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2

0: 60 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
3: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग

0: आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडी वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 2:30 बज रहे ने। आओ सुनते हैं प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस प्रोग्राम विच कलाकार होंगे पॉल। आओ सुनते हैं पॉल दी आवाज़ विच बाबा फरीद।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असीं तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरिया चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करते हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी गीता दी फरमाइश नूं पूरा करते हाँ। प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ एक मिठे जिहे गीत नाल। इस गीत नूं सुनन दी फरमाइश कीती है जमशेदपुर तों हरजिंदर पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीच पाटिया ते पप्पी पाटिया। महादेव घाट अमलेश्वर तों डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ते बाबू रियांश ठाकुर। खुरजा उत्तर प्रदेश तों तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा। पिंड खाने की ढाब मलोट तों शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर, करन प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर ते मनराज। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तों ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा पहला गीत नछत्र गिल दी आवाज़।

हाँ जी दोस्तों, असीं भी उस परमात्मा नूं इही अरदास करांगे कि वह सारयां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखे ते सारयां नूं सुख ते खुशियां देवे। साडे वल्लों भी पूरी कोशिश कीती जांदी है कि साडे स्रोतियां वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं उहनां दे मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां शामिल करदे हुए उहनां वल्लों कीती जांदी गीता दी फरमाइश नूं पूरा कीता जावे, तां कि वह भी दिलों खुश रहन कि उहनां दी फरमाइश पूरी हुई है। इसी तरह प्रोग्राम की अगले फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने पिंड पंगाल पंगाला जिला फाजिलका तो जगतार गिल, गुरमीत गिल, नाजम सुखमन, कमलदीप गिल, एस के शर्मा ते जगतार टेलर। इसी तरह भाटावारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ तो द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, चावेंद्र कुमार। महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी ते गुरमन्नत। सैक्टर 67 मोहाली तो टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका।

बिल्कुल सही गल है दोस्तों, खाओ पियो ऐश करो, पर कदे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हरेक व्यक्ति दे दिल अंदर रब वसदा है। तो जेकर असी उस व्यक्ति नूं नाराज़ करांगे तो उस दिल दे अंदर बैठा रब भी साढ़े तो नाराज़ हो जाएगा। सानू सारे ना खिड़े मत्थे मिलना चाहिए है, तो घर आए हरेक मेहमान की आओ भगत करनी चाहिए है। वो कहिंदे ना जी, उत्थे वसदा है रब जिथे खुश होण सब। दोस्तों, प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजने वाले ने मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीकेपुरी कैलाश, अनीता, ममता, मेघा ते पूजापुरी। इस तरह गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीश, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी, अरुण, नेहा, एकता, शम्मी, बोधी, सुनील, वीकेपुरी, आरएसपुरी। इसी तरह पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जगवीर, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। पिंड अतापुर कॉलोनिया जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, अतापुरी, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। दोस्तों, इन्हां सारे की फरमाइश से सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत सतिंदर सरताज की आवाज़ में।

डॉन इस फिल्म का गीत तुसी सुनिया आशा भोसले की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत दा अगला नगमा।

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत तुसी सुनिया किशोर कुमार दी आवाज़ विच। तुसी सुन रहे हो सदाबहार गीत आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों।

लता मंगेशकर की आवाज़ विच तुसी सुनिया एक फूल दो माली फिल्म चो लिया गया गीत। प्रोग्राम अगे तोरदे हां ते आओ सुनदे हां अगला गीत।

तै साहिब की बात जे आखे, कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करी जै। ये कथन गुरमुख प्यारे जना अते उस परमात्मा विचाले प्रीत दा वर्णन करदा है। जे कोई उस प्रीतम दी बात सुनावे तां गुरमुख प्यारे अपना सीस अर्पण करन लई तैयार हो जांदे ने। उते अपने सीस नू अर्पण करके उसका आसन बना के प्रभु दी बात सुनावन वाले वडभागे जीव नू वो आसन ग्रहण करन वास्ते बेनती करदे ने। प्रभु दी प्राप्ति चतुराइयां स्याणपां नाल नहीं हुंदी, ना ही कोई दान कीत्या हुंदी है। भावें लखां मन सोना ही क्यों ना दान कर दिता जावे, प्रभु दी प्राप्ति तां मन अर्पण करके हुंदी है। कंचन स्यो पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: कंचन से वो पाया नहीं तोल, मंदे राम लिया है मोल। इस शब्द गायन कीता सी भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: गौड़ी कबीर जी ते पदे, कंचन स्यों पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। रहाउ ब्रह्मै कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी। यह पावन पवित्र शब्द भगत कबीर साहब जी का उचारण किया होया है। यह शब्द गौड़ी राग दे अंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे पावन अंग 327 दे उपर दर्ज है। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन समय जिथे गुरु साहबान की बाणी दर्ज की, उत्थे नाल ही भगतां भट्टां ते गुरसिखां नूं भी सन्मान बख्श के उन्हां दी बाणी नूं नाल दर्ज किया है। भगत साहबान विचों सब तो ज़्यादा बाणी भगत कबीर साहब जी की है। विचार अधीन शब्द गौड़ी राग विच कबीर जी का ते पदे भाव तीन पदियां दे रूप विच उचारण किया होया शब्द है। शब्द के आरंभ विच भगत जी फुरमान करते हैं, कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। शब्द के अंदर भगत जी ने परमात्मा दे नाम की महिमा करदिया होया कहा है कि प्रभु का नाम सोने दे द्वारा भाव अपने भार दे बराबर सोने का दान करन ते भी प्राप्त नहीं हो सकता। मैं तां अपना मन परमात्मा नूं अर्पण करके उस दा नाम मुल लिया है, भाव प्रभु नाम संसार दी धन दौलत द्वारा नहीं मिल सकता। ये अंदर दी खेड है ते मन भेटा करके ही नाम प्राप्त हो सकता है। अगे कबीर साहब जी फरमाउंदे हन, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सु

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल

साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को

0: पैट्रिक मिर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 178,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 154,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अस आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 ने हुन तुसी सुनोगे प्रोग्राम दा वेरवा।

हुण तों कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 इंडिया ते नीदरलैंड दीआं टीमां विचकार हो रहा जिस दा सिद्धा प्रसारण तुसी सुणोगे आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र FM रेनबो DTH DRM रेनबो मोबाइल ऐप ते ए प्रसारण मैच दे अखीर तक प्रसारित कीता जावेगा। शाम 6:30 बजे तो साडे प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे मोबाइल ऐप राही। शाम 6:30 बजे पेश करांगे जी देहाती प्रोग्राम। अज इस विच काम दीआं गल्लां, अज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल भूमि रक्षा अभियान बारे विशेष प्रोग्राम पेश कीता जावेगा ते इस तो बाद स्वामी रघुनाथ योग दी महत्ता बारे जानकारी देणगे। सत्त बज के 10 मिनट ते NDA सरकार दे 12 साल पूरे होने ते नक्सलवाद ते

0: एक विशेष प्रोग्राम तुसे सुनोगे। सत बज के 45 मिनट ते समाचार समीख्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। सत बज के 50 मिनट ते पंजाबी वार्ता प्रोग्राम च चरणजीत सिंह चीमा की वार्ता सुनोगे, भगत कबीर जी का जीवन अते सिख्यावां। रात 8 बज के 10 मिनट ते पेश करेंगे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट ते 9:30 बजे चर्चा का विषय है प्रोग्राम तुसे सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। हम पेश करेंगे जिस विच तुसी फोन इन ते व्हाट्सएप राही अपनी पसंद दे गीत सुन सकोगे। सो एसी जी प्रोग्राम दा वेरवा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
2: विशेष लोक अदालत लग रही है
3: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा।
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता ली 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
1: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों का प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार के माण मत्ते 12 साल की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की जुबानी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दस लाख दी लॉटरी मेरी, वाह।
7: फसी फर्जी ऑफ

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: यार सच दसा, हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हज़ार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओह आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही देना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के नहीं रहे वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून नूं एक विशेष प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अधीन करीब 2,400 करोड़ रुपए के लाभ वंडन के। पंजाब विच एक प्रोग्राम पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर ते बटाला EPFO दफ्तरां समेत 6 थावां ते कराया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कमिशन की चेयरपर्सन विजय रातकर ने खुलासा किया है कि पिछले कई सालों में पंजाब में NRI पतियों वालों करीब 32,000 औरतों को छोड़ दिया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने चंडीगढ़

0: एनडीए सरकार दे 12 साल पूरे होने ते नक्सलवाद ते एक विशेष प्रोग्राम हुण तुसी सुन रहे सी साडे दिल्ली केंद्र तों। साडे प्रोग्राम तुसी सुन सकदे हो मोबाइल ऐप ते। इस वेले 7:45 ते 3 सैकेंड होए ने। हुण पेशी प्रोग्राम समाचार समीख्या।
1: नमस्कार, पेश है हफ्तावारी समाचार समीख्या। लेखक ने सीनियर पत्रकार जितेंद्र पम्मी, वाचिका अमनप्रीत कौर। हर साल 21 जून नू विश्व भर विच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जांदा है। ए दिन योग दे महत्व नू उजागर करन अते मनुखी जीवन विच इस दी उपयोगता बारे जागरूकता पैदा करन लई समर्पित है। ए साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दा विशा तंदुरुस्त बुढ़ापे लई योग रखा गया है। ए विशा अज दे समय दी एक महत्वपूर्ण लोड़ नू दर्शाउंदा है, क्योंकि वधदी उम्र दे नाल शरीरक अते मानसिक सेहत नू बनाई रखना एक वड्डी चुनौती बनदा जा रहा है। उम्र बदन दे नाल शरीरक दी ताकत, लचकता अते संतुलन विच कमी आउणी शुरू हो जांदी है। योग अजिहियां समस्यावां नू घटाउण विच मदद करदा है अते इह जोड़ां नू सरगर्म रखदे होए मांसपेशियां नू मजबूत बणाउंदा है अते शरीरक संतुलन विच सुधार करदा है। इस नाल डिगण ते सट लगण दा खतरा घट हुंदा है। इस तों इलावा योग मानसिक तौर ते बुजुर्गां नू सरगर्म अते आत्म विश्वासी बनाई रखदा है, जिस नाल ओह लंबे समय तक स्वै निर्भर जीवन बतीत करदे ने। योग नू विश्व पद्धर ते मनाउण लई यूनाइटेड नेशनस वल्लों मानता 21 जून 2014 नू दित्ती गई है। उदों तों ही विश्व दे वख-वख देशां अंदर इस दिन ते योग कैंप लगा के लोकां नू योग आसन करवाए जांदे ने। जेकर योग दा पुरातन इतिहास ते झात मारीए तां इह भारत दी प्राचीन सभ्याचारक अते अध्यात्मिक विरासत दा अनमोल हिस्सा है। योग दा अर्थ है जोड़ना, मिलाउणा, इकजुट करना। योग दा असल मकसद मन, शरीर अते आत्म विचकार संतुलन अते सद्भावना स्थापित करना है। योग सिर्फ शरीरक कसरत नहीं, सगो एक अजिहा विज्ञान है जो मनुख नू शरीरक, मानसिक, भावनात्मक अते अध्यात्मिक पद्धर ते तंदरुस्त बनाउंदा है। योग शास्त्रां अनुसार इस दा उद्देश व्यक्तिगत चेतना नू सर्वव्यापी चेतना नाल जोड़ना ते मनुख नू आत्म ज्ञान वल लै जाना है। योग दा इतिहास हजारां साल पुराना मन्या जांदा है।

0: उपनिषद महाकावां पुराणा अते पतंजलि योग सूत्रां विच योग दे सिद्धांत ते अभ्यासां दा विस्थार नाल वर्णन मिलदा है। योग दे अठ अंग यम निजम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान अते समाधि हुंदे ने जो मनुखी जीवन नूं संपूर्ण बनाउण दा मार्ग दर्शाउंदे ने। आधुनिक जीवन दी भज दौड़ तनाव अते गलत जीवन शैली कारण लोकां विच अनेकां शरीरक अते मानसिक समस्यावां वध गईआं ने। अजिहे समय विच योग सेहतमंद जीवन जीउण दा इक प्रभावशाली साधन बन के उभरिआ है। नियमित योग अभ्यास नाल शरीर दी कारगुजारी वधदी है अते व्यक्ति रोजाना दे काम आसानी नाल करन दे योग बनदा है। इस तों इलावा योग दिल दी सेहत नूं सुधार ब्लड प्रेशर नूं काबू करन विच मदद करदा है ते शुगर वर्गियां लंबे समय दियां बीमारियां दे खतरे नूं घटाउंदा है। योग दे लाभ सिर्फ शरीरक सेहत तक सीमित नहीं इह मानसिक सेहत लई भी बहुत फायदेमंद है। प्राणायाम ते ध्यान वर्गे अभ्यास मन नूं शांत करदे ने अते तनाव नूं घटाउंदे ने। अज दे युग विच जदों चिंता डिप्रेशन अते मानसिक थकावट आम समस्या बन चुकियां ने योग मानसिक संतुलन कायम रखण विच इक कुदरती तरीका है। नियमित योग अभ्यास नाल एकाग्रता वधदी है अते भावनात्मक स्थिरता प्राप्त हुंदी है अते नींद दी गुणवत्ता विच सुधार आउंदा है। इह मनुख नूं जीवन दीआं चुनौतियां दा सामना करन लई मजबूत बणाउंदा है। अजकल सेहत संभाल ते पुनर्वास प्रोग्रामां विच योग दी महत्ता वध रही है। कई हस्पतालां ते फिजियोथेरेपी केंद्रां विच योग नूं सहायक थेरेपी वजों अपनाया जा रहा है। गोडे ते कमर दी सर्जरी तों बाद स्ट्रोक रिकवरी गठिया पिठ दर्द अते होर कई बीमारियां दे इलाज दौरान योग शरीरक ताकत ते गतिशीलता नूं मुड प्राप्त करन विच मदद करदा है। इस दे नाल ही इह मरीजां नूं मानसिक तौर ते मजबूत बनाउंदा है अते रिकवरी दी प्रक्रिया नूं आसान बनाउंदा है। योग दी खूबसूरती इस गल विच है कि इस दा अभ्यास हर उम्र दा व्यक्ति कर सकदा है। शुरुआती पद्धर लई ताड़ आसन बल आसन भुजंग आसन मरजारी आसन बिठली आसन सुख आसन ते सेतु बंद आसन वर्गे आसन बहुत लाभकारी मन्ने जांदे ने। हालांकि किसी भी सिहत समस्या जां सट दी स्थिति विच योग अभ्यास शुरू करन तों पहलां डाक्टरी सलाह लैणी चाहीदी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दे मौके ते आयुष मंत्रालय ते भारतीय सभ्याचारक मामलियां दी भारतीय कौंसल दे सहयोग नाल दुनिया भर विच हजारां योग समागम कीते जा रहे ने। विदेशां विच स्थित भारतीय मिशनां वल्लों लगभग 2500 स्थानां ते योग सैशन करवाए जा रहे ने। इह इस गल दा प्रमाण है कि योग हुण सिर्फ भारत दी विरासत नहीं रहा सगों सेहत अते तंदरुस्ती लई विश्वव्यापी अंदोलन बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सानू ए संदेश दिंदा है कि जेकर असी योग नू अपनी रोजाना जिंदगी दा हिस्सा बना लईए तां असी ना सिर्फ बीमारियां तों बच सकदे हां सगों एक सेहतमंद खुशहाल अते सरगर्म जीवन भी बतीत कर सकदे हां। इस लई आओ सारे 21 जून नू अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ते ए प्रण करिए कि योग साधना नू अपने जीवन दा अटुट हिस्सा बनाईए। इस दे नाल ही समाचार समीक्षा खत्म हुई। नमस्कार।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी समाचार समीख्या। तुसी साडे प्रोग्राम मोबाइल ऐप राही सुन सकते हो। इस वेले 7:50 ते 26 सैकिंड होए ने। हुण पेश है पंजाबी वार्ता प्रोग्राम च चरणजीत सिंह चीमा दी वार्ता भगत कबीर जी दा जीवन ते सिख्यावां।
2: भगत कबीर जी भगती लहर दे महान अते श्रोमणी भगत होए हन। उन्हां दे क्रांतिकारी विचारां ने उन्हां दीआं महान सिख्यावां ने अते उन्हां दे उच्चे किरदार ने भारतीय समाज विच महान तब्दीलियां लियांदियां। उह इक महान संत कवि होए हन। बाबा कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी विच कांसी बनारस नेड़े लहर तलाव विखे होया। यह कहा जाता है कि एक विधवा औरत ने इस बच्चे नूं जन्म दिता ते कांसी नेड़े लहर तलाव विच कमल दे फुल्लां कोल एक लकड़ी दे बक्से विच पा के रख दिता। उत्थों पालक पिता नूर अली जी अते माता श्रीमती नीमा जी जो कि निरसंतान सन इस बक्से विचों छोटे बालक नूं अपने घर लै आए। उन्हां ने बहुत ही प्यार अते दुलार नाल बालक दी पालना कीती। बालक दा नाम कबीर रख्या गया। कबीर दा लफजी अर्थ वड्डा ते महान है। आप जी तुरों ही प्रभु वल्लों जीवा नूं जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मलाए दी कार करन लई भेजे गए सन। आप जी दा जन्म उस समय होया जिस समय हिंदुस्तान विच मुसलमानी राज दा अत्याचार सिखरां उत्ते सी अते ब्राह्मणी मत अनुसार लोक आई फोकट कर्मकांडा दी डूंगी

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 8:10 ਤੇ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ।

तुसी सुन रहे हो जी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। कहते हैं कि आदमी नू एक मुसाफिर किया जाता है क्योंकि जीवन एक यात्रा वांग है। इंसान जन्म तो लैके अंत तक लगातार सफर करता रहता है। इस सफर दौरान वो कई तजर्बे ते सिख्यावां भी प्राप्त करता है। हर मोड़ उसनू कुछ नवा सिखाउंदा है। कदे खुशियां मिलदियां ने ते कदे मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। इंसान अपने कर्मा राही जीवन दी राह तय करता है। सफर विच मिलन वाले लोग उस दी जिंदगी नू प्रभावित भी करते ने। समां लगातार अगे वधदा है ते ए यात्रा भी जारी रहिंदी है। इसलिए मनुख नू हर पल दी कदर करनी चाहीदी है। असल विच आदमी एक मुसाफिर ही है ते जीवन उसकी एक सुंदर यात्रा है।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
1: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति

0: पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के

0: ये कई ऐतिहासिक पहल की है जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94 रुपए 53

0: पैसे पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talk, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathmikta milegi. Excellency, main phir ek baar पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।
2: Earlier, Prime Minister Modi addressed a working session themed promoting

0: फॉर्म तामीर किए जाएंगे, जिसके बाद प्लेटफार्मों की कुल तादाद 12 हो जाएगी। इसके अलावा कामकाज की कारकर्दगी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम की जगह जदीद इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए भारत ने नुमाया तरक्की की है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ और फरोग के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने अपनी तहजीबी विरासत के तहफ्फुज़, फरोग और उसका जश्न मनाने के लिए कई तारीखी इकदामात किए हैं, जिनसे लाखों शहरियों में फख्र का जज्बा पैदा हुआ है। अहम वाकयात में सबसे अहम वाकया जनवरी 2024 में पेश आया, जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अजीमुशान श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अंजाम दिया। ये सदियों पुरानी एक ख्वाहिश की तकमील थी। हाल ही में मंदिर का दौरा करने वाले एक अकीदतमंद पंकज जारिया ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगु करते हुए अपने तजुर्बात बयान किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला मरहला अक्टूबर 2022 में कौम के नाम वक्फ किया गया। ये अजीम कॉरिडोर शानदार मुजस्मों, दीवारों पर बने फन पारों और तामीरात पर मुश्तमिल है, जो भगवान शिव की जिंदगी और उनसे मंसूब रिवायात की अक्कासी करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत पर मबनी निगरानी के निजाम से आरास्ता महाकाल लोक विरासत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2021 में किया गया था, ने यात्रियों के सफर के तजुर्बे को यकसर बदल कर रख दिया है। ये कॉरिडोर मंदिर को बराह रास्त दरियाए गंगा से जोड़ता है। 5.5 एकड़ पर मुहित इस प्रोजेक्ट ने लोगों की रसाई को बेहतर बनाया है और भारत के सबसे मौजिज रूहानी मराकज में से एक को नई जिंदगी बख्शी है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वाराणसी के रहने वाले प्रियांशु सिंह ने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रियों की आमदोरफ्त में काफी आसानी फराहम कर रहा है।
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये इनकलाबी इकदामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुल्क अपनी सकाफती जड़ों के तहफ्फुज़ के साथ साथ एतमाद के साथ मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: दिल्ली पुलिस के खसूसी सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मुबैना हैंडलर शहजाद भट्टी से वाबस्ता 8 रुकनी कसीर रियासती दहशतगर्दी मॉड्यूल के मजीद 5 मुलजमों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बेस्ट 2.2 के दौरान मस्कूरा मॉड्यूल के 3 अरकान को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को दिल्ली और पड़ोसी रियासतों में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाने, पाकिस्तान में मौजूद राबताकारों की तशहीर करने और ISI की सरपरस्ती में मुबैना तौर पर कायम तंजीम तहरीक तालिबान हिंदुस्तान को फरोग देने की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क से मुतालिक पोस्टर्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किए, जिनमें पुलिस अहलकारों को धमकियां देने वाली वीडियोज भी शामिल हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों और मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खत्ते में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के इलाकों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। IMD ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन के दौरान तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मजीद कुछ इलाकों, नीज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। IMD के

मुताबिक कल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अंडमान और निकोबार जजायर में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इससे कबल भारतीय टीम 49 ओवर्स में 5 गेंदों में 402 रन बनाकर आउट हो गई। शुभमन गिल और ईशान किशन ने सेंचुरियां बनाई। गिल ने 154 रन बनाए जबकि किशन ने 125 रन स्कोर किए। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अब से कुछ देर पहले तक अफगानिस्तान की टीम ने 44.3 ओवर्स में 8 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एवियों में G7 सरबराह इजलास के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। मीटिंग में बहरी जहाजों के अमले की सलामती और आबनाई हुरमुज को खुला रखने के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्ता और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फोन देर लेन के साथ भी दोतरफा मीटिंग की। पेरिस में वीवाटेक 2026 के दौरान इंडिया पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब में भारत और फ्रांस ने जिद्दत तराजी, मसनू जहानत और तकनीकी तावन के फरोग के अज़्म का इयादा किया। रेलवे ने कनेक्टिविटी और मुसाफिरों की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 3 एकरोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हों, युद्धपोत हों या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी हैं। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बैनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। जो डिफेंस कॉरिडोर्स का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना।

0: जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना। तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो। आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है। तो ये जो एक है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, वो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज टू बी समथिंग लाइक 43,000 odd crores, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crores है। प्राइवेट प्रोडक्शन यू कैन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इसे 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, उनकी कंपनियों को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इतनी आसान नहीं है और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्री ने, कम से कम पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के DRDO ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए तो जरूर मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, वो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद

0: बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है। जॉब के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट फॉर मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए, उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, वे आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई हैं, और खासकर मैं कहूंगा टाटास की हो, महिंद्रा हो, एल&टी हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो। तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई स्पेयर उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें DRDO की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड है जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, वहां के बच्चे बड़े होशियार है, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स है वो आगे आते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम दिया, जैसे आप कह रहे हैं वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, और हो सकता है कई एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स नॉट सो इजी। ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए। क्यों? हमने उनके भरोसा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे। इसलिए अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने हैं। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इंपोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इंपोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप है वो इंडिया में बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंतर, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इंपोर्ट नहीं होगा। तो वो जब पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज, ड्रोन यानी UAV बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय अब एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको

0: हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि पांचवी श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से एक बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में, तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है। हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को तुर्की ने दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करते, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये, तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास चाहे नेविगेशनल लॉजिस्टिक हो या उसके सीकर हो या उसके पास फोटोग्राफिक देते, बहुत कुछ साधन है जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप्स को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे, कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी अब तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है, इसमें आत्मनिर्भरता तो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बातें का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में तरह तरह के टेरेन कंडीशन है, तो ये सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAVs को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हर एक चीज के साथ मिल करके अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है ये हम भारत के अंदर बनाए, और इसको देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है देयर शुड बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं ग्लोबल साउथ ने हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जैसे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए।

0: या हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर है। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और ये मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहाँ 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेंड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेंड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको। MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहां बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पर इंपैक्ट करता है सबको, छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इंपैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब रहे, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रहना है उससे और आगे बढ़ना है, अगर नंबर वन GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर टू तकरीबन 17-18 trillion का है, तो नंबर तीन 4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम 14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है, और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि उसने मधुमक्खी के चट्टे में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है भिनभिना गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा कौन से स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फटाफट कौन से जनरेशन है 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इंपोर्ट किया 4.5 जनरेशन स्टिल, तो आप देखते किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं, हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस तरह जो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर्स इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट है, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए हाँ ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमारा सैनिक US के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक साउथ एशिया में देश है उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है,

0: जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब वेन यू ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाइप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाइप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक को प्रोडक्शन के लिए, इंजन की, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यही इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई, उसकी कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया है, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए, 30 साल लग गए जी 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना है, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रांग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रांग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हुए, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रांग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है, अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की यही यात्रा आसान

0: नहीं थी, लेकिन यह सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियां, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम तुसी इस वेले सुन रहे जी। प्रोग्राम च फरमाइशी सिलसिला जारी है। सुखचैन सिंह पवार सनौर तो सानू फरमाइश भेज रहे ने, परवीन कौर, हरमनजोत, मनजोत, जोवनप्रीत ते इना दा पूरा परिवार। वासदेव छावड़ा, अंश चिराग ते इना दे बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने जी। लालड़ू मंडी तो, ज़िला मुरादाबाद तो सानू फरमाइश भेजी है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मनवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलबीर सिंह होना ने। आओ सुनते ना सारे दी मिली जुली फरमाइश ते आशा भोसले दी आवाज़ च एक गीत।

0: साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार

की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी दोस्तों, आकाशवाणी पंजाब ते तुहाडा मुड़ स्वागत है। सो वेला हो गया प्रोग्राम सौगात का, तो आओ फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम सौगात। पर प्रोग्राम शुरू करन तो पहला मैं तुहानू अपना वट्सएप नंबर ते लैंडलाइन नंबर जरूर दस दें। सो साडा लैंडलाइन नंबर है 0181-23-4141, तो वट्सएप नंबर है साडा 9465-36077। सो अपने पंजाबी फरमाइशी गीतां दी फरमाइश तुसी लैंडलाइन लाइन दे जरिए भी सानू भेज सकदे हो, ते व्हाट्सएप दे जरिए भी सानू तुसी मैसेज कर सकदे हो, ते वारी वारी असी सारियां दीआं फरमाइशां जिहड़ियां ओह पूरियां करांगे। ते आओ फिर प्रोग्राम दी शुरुआत।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। साढ़े वेले साढ़े अगले कॉलर दोस्त भी पहुंच चुके ने, आओ फिर रबता कायम करते हैं उन्होंने नाल। हैलो,
1: हेलो कमल जी, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: जी मनजीत कौर बोल रही हूं दिल्ली तो जी। की हाल चाल तुहाडा?
0: बहुत वधिया मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है।
1: अच्छा जी,
0: हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत तुहाडा भी शुक्रिया जी साडे प्रोग्राम नूं एंजॉय करन दे लई। ते दसो किहड़ा गीत सुनाईए फिर?
1: गीत अज सुना दो, गिप्पी गिरेवाल दा सुना दो, वधिया जिहा।
0: क्या बात है जी, जरूर जी, ते लो फिर एंजॉय करदे हैं गीत। धन्यवाद जी कॉल करन दे लई।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सत
0: श्रीकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सुखदेव सिंह
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है। हाँ जी, दसो जी, फिर कह
1: बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी। ते बहुत वधिया तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो, बड़ा
0: धन्यवाद जी,
1: आनंद आ रहा है
0: धन्यवाद जी। दसो केड़ा की सुनाइए।
1: जी। दुर्गा रंगीला सुना गई तेरे नैन, ठीक
0: ठीक है जी, जरूर। बस एक दो मैसेज आप पढ़ लिए तो फिर
1: है जी।
0: असी थानू गीत सुनाने हैं। धन्यवाद जी कॉल करने के
1: ओके,
0: लिए।
1: धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, सानू काफ़ी सारे साढ़े मित्रां प्यारियां दे मैसेजेस भी मिल रहे हैं और असी उन्हां दियां फरमाइशां पूरियां भी करांगे और वारी वारी सारियां दियां पूरियां फरमाइशां असी करांगे, मैसेज पढ़ांगे भी। और ये सानू मैसेज आया हनुमानगढ़ फजलका तो, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा, सिद्धक वर्मा, प्रियांशी वर्मा, त्याल वर्मा फैमिली। कहिंदे जी सानू कोई भी गीत सुना दिओ तो जरूर। नाल दी नाल सानू सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तो सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज, ये भी कहिंदे ने कोई भी गीत सानू सुना दिओ। ते सरहंदी बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता रानी रहेजा, चरण रहेजा, डैनू नीतू, डैनी नीतू, ज्योति ते सजनी, ये भी कहिंदे ने जी अपनी पसंद आई, तुसीं कोई गीत सानू सुना दिओ। ते लो जी, मीता जी ने भी एंट्री मार ली है और ये नवीं दिल्ली तो गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नवीं दिल्ली तो पहुँच चुके ने साडे कोल। ते कहिंदे ने जी कोई भी गीत वधिया जिहा सुना दिओ। ये सानू प्रोग्राम जिहड़ा मैसेज आया है, कूलम रोड, हरगोबिंद नगर, नवांशहर तो सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रतिशा संधू ते मैक्स, कहिंदे कोई भी गीत सानू तुसीं सुना दिओ जी। हरछिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, पिंड नथाणा, बठिंडा तो, कहिंदे कोई भी सदाबहार गीत सानू सुना दिओ। ये नाल ये सानू जी मजनू दा टिल्ला तो मैसेज आया, कमल बलूजा, मधु बलूजा।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: कोई बोले ना बोले सब से अपना रोब जमाते ने। टीचर
0: हेलो
1: दे जाते समय खुद टीचर बन जाते ने, आंदा जांदा कख नहीं मनीटर बन जाते ने। जगदीश सिंह काला बोलदा जी।
0: हाँ जी काला जी नमस्कार। बहुत बहुत ते पूरे ढोल ढमके के नाल तुहाडा स्वागत है। हाँ जी दसो काला जी केड़ा गीत सुनाइए फिर तुहानू
1: देखो जेडे गीत तुहाडे तो सुनते हैं असीं, तुसीं ओह गीत तां सुणांदे नहीं जी। नहीं
0: दसो केड़ा गीत सुनना तुसीं उहो सुनावांगे जिहड़ा तुसीं कहने हो जिहड़ा तुसीं फरमाइश कीता हुंदा।
1: सर, नहीं तुहाडी रिकॉर्डिंग मेरे

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं तो कहड़ी जगह तो बोल रहे हैं? हाँ
1: नमस्कार जी। कमल शर्मा जी, श्री
0: जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: गुरु रविदास नगर मलोट तो की चंद्र रसगणिया जी।
0: रसगणिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है।
1: कमल शर्मा जी, तुहाडा ही बहुत बहुत थैंक यू साडी कॉल रिसीव करन वास्ते।
0: धन्यवाद जी, असं बैठे ही इस गल वास्ते इतने। और होर दसो, ठीक ठाक हो? सेहतां ठीक?
1: हाँ ठीक, हाँ सेहता ठीक है। तुसी
0: क्या बात है।
1: सुनाओ, मौसम किदा था जलंधर दे विच?
0: बस बहुत वधिया जी, बहुत
1: ठंडा हो
0: अच्छा।
1: गया कुछ
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: मौसम?
0: अगे नाल थोड़ा जहा ठीक होया।
1: हाँ, गर्मी तो
0: फिर
1: राहत मिल गई है। गीत
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दसो, कहड़ा गीत सुनाइए फिर?
1: फिर कमल जी, अज तुहाडी फरमाइश चलूगी।
0: आहा,
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: बात
1: अज
0: है,
1: तुहाडी पसंद दा सुनना अज।
0: क्या बात है जी। धन्यवाद
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: कोई गल, थैंक यू बहुत बहुत।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। सर अपने रेडियो सेट नू जरा बंद कर लो या उत्तों परे हो जाओ थोड़ा जा। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं जी? हाँ जी जनकराज जी, बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढमक्के के नाल स्वागत है। हाँ जी दसो जी, केड़ा गीत सुनाइए। हेलो। हाँ जी हाँ जी, कंट क्लेयर दा तू चेते आवे। ओके जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी
0: कमल जी
1: नमस्कार
0: सत
1: जी।
0: श्री अकाल।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं जी, केड़ी जगह तो?
0: देश राज ड्राइवर तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। बहुत
1: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी।
1: हाँ जी दसो जी, केड़ा गीत सुनाइए।
0: हरजीत हरमन का धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी कॉल करने के लिए। बस एक दो
0: ओके
1: मैसेज पढ़ लिए फिर तुहानू सुनाउने आं असीं गीत।
0: ओके जी ओके।
1: सो दोस्तों, सानू मैसेजेस की कड़ी दे विच बहुत सारे मैसेज मिलते पे ने। और कृष्णा पार्क दिल्ली तो सानू सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना ये भी कहिंदे ने सानू कोई भी गीत सुना दिओ तो जरूर। मंडी हरजी राम मलोट तो नथू राम शर्मा, ललित शर्मा, इंदराज शर्मा, सुरेश शर्मा कहिंदे कोई भी गीत सानू सुना दिओ। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता राणी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, आरजू जजूरिया ते गुड्डू। सदूल सिकंदर दे गीत की फरमाइश की है जी इन्ह ने। और भेजन वाले ने सानू फरमाइश कनेरा महला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक करण, गीतू निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। ते लो जी फिर इंजॉय करते हैं गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे जी? तो केड़ी जगह तो?
1: सर। नमस्कार जी,
0: नमस्कार जी।
1: मैं कांता वर्मा बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश सोलन शिमला कसौली
0: हाँ
1: सोलन
0: जी,
1: से।
0: कांता जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है।
1: सर
0: हाँ जी, दसो कांता जी, केड़ा गीत सुना दिए तुहानू? फिर
1: जी आप सुना दो जगमोहन।
0: कौर का सुना देते हैं। ठीक है
1: हाँ
0: जी,
1: जी, हाँ जी, और
0: धन्यवाद जी,
1: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी। और
0: धन्यवाद जी।
1: मौसम यहाँ का ठंडा है जी, बहुत है।
0: हाँ जी, हाँ जी, हिमाचल में तो फिर ठंडा हो गई।
1: हाँ जी, 22 डिग्री है जी यहाँ का
0: हाँ
1: तापमान।
0: जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद।
1: और सर

0: हेलो सर जी, सत श्री अकाल
1: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं तो कड़ी जगह तो बोल रहे हैं? मजीद
0: जी। मैं मनजीत सोनी फाइल
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है पूरे टूर्नामेंट में
0: ओके
1: तेरा।
0: सर जी, गीत फोन कर रहे सर जी, नाम दिया गया।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: हाँ जी, माँ तिया का गीत सुने बहुत वधिया।
1: हाँ क्या बात है, हरेक जड़ी
0: हाँ
1: धी
0: जी
1: है उन्होंने मां चेते आऊगी ते मां नु धी चेते आएगी।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: ते दसो फिर केड़ा गीत सुनाइए।
0: तुसी की कर दे हो
1: हाँ जी,
0: निमर्त खेरा।
1: क्या बात है जी। लो जी, जरूर
0: हाँ
1: सुन
0: जी
1: लेने जी गीत। धन्यवाद कॉल
0: ओके
1: करने के लिए।
0: ओके सर, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो कमल, नमस्कार।
0: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं तो केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: तेरा कॉलोनी और परमा का।
0: धर्मा सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमक्के के नाल स्वागत है। हाँ
1: जी
0: जी,
1: सुना
0: धन्यवाद
1: जी
0: जी।
1: का अजीत
0: दसो केड़ा गीत सुनाइए जी।
1: मीर।
0: हेलो,
1: हेलो कमल जी, मीर
0: केड़ा केड़ा? हाँ जी, ठीक है जी, जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

उलाह नो मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। रबी रजा नू रबी पाणे नू मनन वाले ए इलाही बोल बाणी के बोहित शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित ने वैसाख वदी सतवीं संवत 1620 बिक्रमी नू श्री गोइंदवाल साहिब विखे पिता साहिब श्री गुरु रामदास जी दे गृह विखे माता पानी जी दी कुखों अवतार तारण वाले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी परतख हर सन आप जी प्रभु भगति विच लीन रहिंदे, आप जी प्रभु पाणा मनण दी सिखर सन। भादरों सुदी दूज संवत 1638 बिक्रमी नू आप जी नू गुरगद्दी प्राप्त हुई। आप जी ने महान सेवा कारज कीते। श्री संतोख सर साहिब, श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर, श्री तरन तारण साहिब, श्री छेहरटा साहिब, श्री करतारपुर साहिब, श्री बौली साहिब, श्री रामसर साहिब, गुरु का बाग, तहसील अजनाला आदि स्थानां दी सेवा करवाई। आप जी ने अनेका महान कल्याणकारी कारज कीते। ऊंच नीच जात पात दे भिन्न भेद मिटाउंदे होए सांझीवालता दा संदेश प्रसारित करन वास्ते अपने तो पहलां दे गुरु साहिबान प्रभु दे अनन प्यारे भगतां अर्शी पट्टां अते गुरसिखां दी बाणी संकलित अते संपादित करके पोथी दा रूप प्रदान कर दिता। आप जी ने भादरों सुदी एकम संमत 1661 बिक्रमी नू सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर विखे पहली वार आदि श्री ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाया। आप जी ने 30 रागां विच बाणी उचारी जो कि कुल सृष्टि दे लई उपदेशात्मक है। आप जी बाणी के बोहित सन। आप जी ने कलयुग विच ऐसा बोहित तैयार कर दिता जिसनू श्री ग्रंथ साहिब कह के सत्कारिया जांदा है। आप जी ने जबर जुल्म दा टाकरा सबर नाल कीता। आप जी ने इस सब कुछ नू रबी पाणा मन के वक्ती हुकमरान द्वारा दित्ते हुए तसीहियां नू चलदे हुए लासानी शहादत दित्ती ते फरमाया तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मांगै। आप जी दे समुचे जीवन नू कुछ एक लफ्जां विच बयान करना संभव नहीं है। पट मथुरा जी आप जी बाबत फरमाउंदे ने तत विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जून गर्भ न आयो। श्रवण करदे हां भाई कपूर सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे पासों ए सवैया।

तत विचार यह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो, जपेओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। ए स्वये दा गायन कीता सी भाई कपूर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठिया होया, सीस विच गर्म रेत पवांदिया होया, उबलदी देग विच बैठदिया होया भी उस प्रभु नाल एक मिकसन। आप जी ने ए बचन उचारे, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। इस शब्द का गायन किया है भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

0: तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई वरिंदर सिंह ते उन्होंने रागी जथे वालों गायन किया होया ये शब्द। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दर्शन सिंह।
1: आसा कर सतवां महला पंजवां, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले।

सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। इस शब्द गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

fate. सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद तारं, गुर अर्जन गुण सहज विचारं। गुर रामदास घर किया

0: दर्शन परसे गुरु के साजना परवान।
1: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो। रहस्य किए सुर देव तुह जस जय जय जम्पे, असुर गए ते पाग पाप तिन पीतर कंपे। काटे सो पाप ते नरक के गुर रामदास जिन पायो, छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो।

अपर सर सो पर परायो, गुरगम परमान अजर जरयो, सर संतोख समायो, गुरु अर्जन कल

सहज जोग निज पायो। सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे, आद पुरख पर तखे लिखियो अक्षर मस्तक तुरे। प्रगट

0: सगळ श्रेष्ठ लागे बेतरो।
1: ब्रह्माद शिव शांत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत। सिद्ध मनुख देव अर दानव, इक तिल ताको मर्म ना पावत। प्रया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती, हर जन ताके दर्श समावत।

पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की

है अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चट्टी तुद डिठे सच्चे पात मल जन्म जन्म दी कट्टी सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दे साहु जिस

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

खाने करे निवार श्री भगवान तिन गल ताग तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद उना पे आवे उई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आखार शर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रेखा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों वै प्रमाण मिले सान ले पूजे प्राण भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसै ना जाना दे के चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटै वे मत पिटै ए अन साडा फिटै तन फिटै फेट करे मन जूठै चुरी परे कहो नानक सच ते आई है।